0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे।
1: तब शांति से सूरज गाता तो हजारों सालों से धमकी होती है भाई। कहाँ ये साले?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
0: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर सम्पर्क 97497938798।
4: I'm home.

0: सीधा खुरा प्रश्न विचार
1: उजालो रेडियो नेटवर्क।
2: यो समय किसान पाई प्रोडक्ट्स प्राली को हो।
3: राष्ट्र को शान किसान।
2: अ कम्प्लीट पाइपिंग सोल्युशन्स। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम बदलिदो नेपाल।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: पहले
1: क्या करिए घर पे आके दौलत
2: कौन
1: पता नहीं दारू पी के गाड़ी चला रहा था मरते मरते बची हूँ मैं
2: फालतू है साला मुफ्त में सुन रहा है मत देख उसको चल छोड़ मैनेजर देख रहा है

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिउँसो 3 बजे र साँझ 6 बजे।
1: तब शांति से सूरज जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है भाई? कहाँ ये साले?
2: इसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
0: अन्नपूर्ण चलचित्र मन्दिर बेसी सहर सम्पर्क 97497938798।
4: I'm home.

0: आईफोन है तेरे पास? कैसे आया?
1: कैसे आया क्या? जीता हूँ मैं।
0: जीतने से कोई आईफोन देता है क्या?
1: हाँ देता है ना, हेलो ऐप देता है।
0: हेलो ऐप वो क्या है?
1: अरे हेलो ऐप इंडिया का लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस ऐप को तो डाउनलोड कर सकता है नीचे दिए हुए लिंक से। और सबसे बेस्ट ये है क्या, इस ऐप में अभी एक कॉन्टेस्ट चल रहा है 4 अक्टूबर तक, जिसका नाम है हेलो सुपर स्टार। इसमें कुछ नहीं, तुझे बस अपना अमेजिंग सा कॉन्टेंट डालना है हैशटैग ऑफ हेलो सुपर स्टार में। अगर तेरा कॉन्टेंट उसको पसंद आ गया तो तू जीत सकता है ऐसे बहुत सारे आईफोन, एपल वॉच, वायरलेस हेडफोन और 15 लाख तक के अवार्ड्स।
0: तो इतना दिन क्यों नहीं बोला?
1: तो अभी डाउनलोड करना। और गाइस आप लोग भी डाउनलोड करिए, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन पे।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सिडीज़ FM 95 मेगाहर्ट्ज़

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी।
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा
3: बाबा। मुझसे क्या अपराध करते हैं?
0: कलाकारहरू रकिङ स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?

0: समय दिवसो 3 बजे र साझा 6 बजे।
1: सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है भाई? कहाँ ये साले?
2: जिसका अंजाम क्या होगा ये तुम जानते ही होगे।
3: It's time. I'm coming.
4: अन्नपूर्ण चलचित्र मंदिर बेसी सहर संपर्क 97497383798।
5: I'm home.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: साथै हिन्दी चलचित्र टक्सी
1: चेहरे पे नकाब डालकर अपने गम को छुपा सकते हो, लेकिन तकदीर में लिखी बर्बादी को नहीं।
2: मैं आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगा बाबा।
3: आप मुझसे नफरत करते हैं।
0: कलाकारहरू रॉकिंग स्टार यश, कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, नयन तारा, राज शेखर लगायतका कलाकारको प्रस्तुति।
4: कोई आखिरी ख्वाहिश?
5: ज्यादा कुछ नहीं, तेरे भाई को जला के उसकी राख से लाइन बना के अंदर खींचना चाहता हूँ। खींचने देगा?